साहिब जी तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगै ना दुखा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवाओ अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन प्यासी दिन सरात चितवाओ अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हौ फिरों खो जंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे एक तिल भी ना तिरी जै प्रभ सिंह मन लीना ज्यों जल मीना चातरक जिवै तसंतिया जन नानक गुरपूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रै हबे सखिया मूह कही न जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़ै हौं किस चेतेहिया हिक दू हिक चाड़े अनिक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हो कद पाई गुण ताशा जिनी मेंडा लाल रिझाया हो तिस आगे मन डेहिया नानक कहे सुन बिनो सुहागण मूह दस डिखा फिर केहिया यार वे फिर आपन भाणा किश निसी शंदा यार वे तै रावया लालन मूह दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जय तन भाग मथाने बाह पकड़ ठाकुर हौ किदी गुण अवगुण न पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हबो किश सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोड़ींदा आया वजी वादाई महामंगल रहस थिया पिर दयाल सद नवरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध पै सतसंगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई आसा मनसा सगल पूरी प्रय अंक अंको मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मन सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतासा है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रास नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आग कर तरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सोत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मान पाओ करिया। उडे उड आवै सै कुसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बाल बाल साध बाल जाइय, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आशा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज वेड़ाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवा है जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता।

तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी कर किरिया खाट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई तुद आपे सृष्ट सब

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पहिले निवासा, पाणी पाव को तिन्ह किया। पंकज मोह पाग नहीं चले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हौं जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म पाया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा, पई प्राप्त

है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद ना जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट

तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठौर मोहो हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं।

आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, सबदोता गावहो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारणा सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहेबो क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु वेट हो, जिस दियां एह वडे आईया, कहे नानक सुनहो संतो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कहो, से नाम हर कै लागे, कहे नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सर से, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सात संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका हुए उधारो, एह वसत तजी नह जाई, नित नित रख उरधारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।

पौड़ी, तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख, अग्नि उदर माहे, सुन कै जम के दूत नाए, तेरै छड़ जाहे, पौ जल बिखम असगाहो, गुर सबदी पार पाहे, जिन कौ लगी प्यास, अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे, सब सहनु किरपाल, संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए, जी आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवा, अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, नेतरी सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर से तीरतया, दरगह पाइय ठाओ, कहो नानक कृपा करे, जिसनो ए वाथ दे, जग मह उत्तम काडी है, विरले के महला पंजवा।

साहिब जी अमय दृष्ट शुभ करे हर अघ पाप सकल मालो काम क्रोध अर लोभ मो वस करे सब बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम का।

0: नानक दास एहें सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास एहें सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: तुदया गै अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा बोला जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखराज ता को बिगड़ को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर किशन ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे ऐ कर नौ निधावे ताए सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना सहाय दसा पातशाह की जोत अंतर साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोला जी धन धन श्री गुरु नानक देव गोविंद रूप सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी का कोटान कोट शुकर लख लख धनवाद अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दीदारे बख्श के समूह संगतान निहाल किया है अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी की हजूरी विच रहिंदे अनेक ही प्रकार भुलां गलतियां हो गई होणगियां जान बच्चे समझ के बख्श लो इस वेले आप जी के हजूर कीर्तन सवेले साहब जी के पाठ हुए सुखासन की सेवा हुई बाणी का पाठ करदिआं सुखासन की सेवा करदिआं ने काही प्रकार दीआं भुलां गलतियां हुण ताईआं हो गईआं होणगीआं अपना मेहर भरिआ हथ रखे बख्श लो इस वेले आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं आप जी अपने आसन ते विश्राम करो समूह संगतां नूं छुट्टियां बख्शो अमृत वेले फिर दर्शन दीदारे बख्श के निहाल करना अखरवाद घाट पड़िआ पुल चुक माफ करना सरबत दे काज रास करना सही संत प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाह

प्रभु को सिमरा से सुखवासी प्रभु को सिमरा सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जनाब दयाला नानक जन के मंगल बल प्रभु को सिमरै से पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सत बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु

सिमर सी जन जिन को प्रभ मेया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेदो पाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चाह कुंड जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सकल आकार सब हर सिमरन मह आप निरंकार कार कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर

आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त भौ करे नानक जन संगति तरे पर जात हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर तुक लथा नाम की महिमा संतरित वसै संत प्रताप दुर सब नसै संत का संग बट भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल

माय रंग रसै दृढ़ कर माने मन है प्रतीत काल ने अवे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महो लोभ त्रोह।

ना जाने तुमरा अंत उचे ती ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते स्वाज्ञकारी तुमरी गत मिद तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभु छोड़ कै लग अन सुहाय नानक कहू न सिजई बिन नवें पत जाय। अष्टपदी दस वस्तु ले।

मान उठा। जैसे जन अपना हुक्म नाया, सर्व थोक नानक तिन पाय। अगंत साहु अपनी निराश, खात पीत बरते अन देवलास। अपनी अमान कश बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रोस करे।

मन जग हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड, तू तां को जाप।

संग न कभू धावे साधक संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोचर लह साधु के संग अजर सह साधु के संग वसै थान उचे साधु के संग महल पंचे साध के संग दृढ़ सर्व धर्म साध के संग केवल पर ब्रह्म साध के संग पाई नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार साधु कै संग सो धन पावे जिस धन दे सब को बरसावे साध संग धर्म राय करें सेवा साधु कै संग सो बसुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधु कै संग सर्व थान गम नानक साधु कै संग सफल जन्म साधु कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट तो होत निहाल साधु कै संग गलुखत हरे साधु कै संग नरक पर हरे साध के संग इहां उहां सहेला साध संग विसरत हर मिला जो विषय सोई फल पावे साध के संग व्यर्थ जावे पार ब्रह्म साधरित बसै नानक उदरे साध सुन रसै साध के संग सुनु हर नाव सा संग हर के गुण गाओ साध के संग न मनते विसरे साध संग सर्प निसतरे साध के संग लगे ब्रह्मीठा साधु के संग घट घट डी

करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरिना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना। ब्रह्म ज्ञानी की सब पर माया, ब्रह्म ज्ञानी दे कशमुर न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी का होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहमद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी का मन मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदयानंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खुज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मान माही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदयादेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जया दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

परस सगल निस्तारेश्वरि मिथ्या नहि रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पिख नेत्र साधकी टहर संत संग हित

राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय सावै सो पंडित फिर जुन न आवै।

को से पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वर नाम जपे को नाम जो जो जपे जिसकी गात होए साध संग पवे जन कोई कर कृपा अंतर और तारे पशु प्रेत मुग्ध पाथर।

नहीं वियोग। तैसा सुवंदे सुमटी तैसा अमृत तैसी विक खटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजन जो वरताई साई जुगत नानक हो पुरख कही जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठव जेत जेत घर रखे तैसा तन नाव आपे करन करावन जोग प्रभावे सोई फन होग पसरु आप होए आनंद तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग।

भेद अनेक प्रकार अष्टारी, कई कोट भय पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट मन ब्रह्म है उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तदपी सर होते।

भरपूर कई कोट पाताल की वसी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मेरे कई कोट बजूनी फिरे कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तरवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पण तै तै रखे नानक साव किस प्रभु के हाथे कई कोट पै बरगी राम नाम संग तिन रिव लगी कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास दिन को मिले प्रभु अविनाश कई कोट मंग सत्संग पार ब्रह्म तिन लगा रंग जिन को हो आप सो प्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन

सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट दत्त के बेते सदा निहार को नित्रे। कई गुण नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे। कई गुण नाम गुण गावे आत्म रास सुख सहज समावे। अपने जन को सासा सुमारी नानक कोई परमेश्वर की प्यारी। सुलोक करण कारण प्रविक है दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सो। अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावे सुई होग। खिन में था वो था पनहारा अंतने किश पारा वारा। हुक्मे तार अतर रहावे हुक्मे बुज हुक्म सुमावे।

स्वस्ति रखे प्रभु पावे तो हर गुण पखे प्रभु पावे तो पत तो उधर आप करे अपन विचारे दुहा श्रेया गव स्वामी खिले विकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि उर न आवे कह मानुक ते क्या हो आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए तो सब कुछ ले ज्योतिष पावे सोई करे अन जानत विख्या मेर चै जे जानत अपन अब जय परमे पुला दह दिस तवे निमुख माए चर कुंड फिर आवे करि कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मै नीच कीट को राज पर ब्रह्म गरीब नवाज जाग दृष्ट कुछ न आवे तिस तत्काल दिस दिस प्रगट आवे जाओ को अपनी कर बख्शीस तां का लेखा नगर जगदीश जियो बिन सब तिस की रास घट घट पूर्ण

कसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब कस पयाल कबहू बिदा ब्रह्मचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत क्रैब पात कबहू सोय रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होय बह बड़ राजा कबहू पेखारी निज का साजा कबहू अब कीर्त में आवे कबहू भला भला कहावे ज्यो बल रखे ते भीर है गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होय पंडित करे बखियान कबहू मौन तारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे ज्यो प्रभावे ते वे नचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा वरन कोय कबहू सत संगति हो पावे उस स्थान ते बहन आवे

संत के दुख न अर्जा कटे, संत के दुख न जमते नहीं छूटे, संत के दुख न सुख सब जाए, संत के दुख न नरक में पाए, संत का दुख न मत हो मलीन, संत का दुख न सुबत हीन, संत के हथे को रख न कोय, संत का दुख न थान प्रष्ट होय, संत कृपाल कृपा जी कद नानक, संत संग निंदक पीतद, संत के दुख न ते मुख पव, संतन का दुख न काक ज्यो लव, संतन का दुख न सर्प जो न पाए, संत का दुख न त्रिकुट जो न कर्माए, संतन का दुख न तृष्णा मह जल, संत का दुख न सब कुशल, संत का दुख न तेज सब जाय, संत का दुख न नीच न जाए, संत दुखी खा धाव को नाहे, नानक संत पावेता ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताए, संत का निंदक खेन टिकन न पाए, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावेता उसका भी होय मुख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसा का नहीं मित, संत के दुखी को डान लाग, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन में मर, संत के दुख न सुख ते डर, संत के दुखी को ना ही ठाव, नानक संत पावेता लय मिलाए, संत का दुखी अध बीट ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाय, संत का दुखी उजड़ पाय, संत का दुखी अंतर ते थूथा, ज्यो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी के डाड किश नाहे, अपने बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी को अपन न रखन हार, नानक संत पावे तले उबार, संत का दुखी इयो बिद लाए, ज्यो जल भी होन मछली तड़फ डाई, संत का दुखी भूखा नहीं राज, ज्यो पाप के ईदन नहीं तड़प, संत का दुखी छुटिया केला, ज्यो बुआट तिल खेत महे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंद का तुड़ही पिया, नानक ज्योतिष बाबे सोई थे आ, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी न मर न जीवाइय, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा।

प्राव अपने जन की नींदाल करहे भगत आत्म कह जाए प्रभ अपने सुर सुमाए जो हो होर सुजाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ से हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिनक ओट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जेन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सुख

भगत भाए लावे मन हीत हम निर्गुण यारे नीतिया जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम खरगे गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो

कार्य कुछ न दृष्टि तब आपन तब कहते होता जब तारी आपन सुन सुमार तब बैर विरोध किस संग कुमार जब इसका बन जहे न जापत तब हर क सोग कहो किसे व्यापत जब अपन आप आपर ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आवर तीजा नान करने हार न दूजा जब होवत ब्रह्म केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक है हर अगमा पार तब नरक स्वर्ग कहन गौन अवतार जब निर्गुण प्रसय सुभाई तब शिव शक्त कह कित ठाई

खेल संकुचै तो नानक इक जह अभिगत भगत है आप जह बसर पासार संत प्रताप दो पाख का अभ है तनी उनकी सो

ससियसु नक्षत्रमय बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खिले खेल मोल न पाइए गुण है अमूल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे हूं स्वामी ओत पोत।

संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होई सोई सुख मानै करन करावन हर प्रभ जानै अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन दीक्षा मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सकली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस भावै तिसने मिलाए कावन निकट कवन कहिए दूर आपे आपा भरपूर अंतर गात से आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूता वरतारा सर्व नैन आपे खनहारा।

अनंगी नामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विभूते एकलंकंक बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम बिरदे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्यनारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु तर्मे

सीधी अभे दिय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ता मंग तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अधेश हैं अपेश है भुजंग प्रयात छांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त निदाने नमस्तमुंग नृणाथे नमस्तमुंग परमाथे नमस्तमुंग अगंजे नमस्तमुंग अपंजे नमस्तमुंग अकाले नमस्तमुंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साह साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वप्रीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे स्मसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा सिद्ध अरिद सिद्ध निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तरमे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तरमंग अलाक कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं दुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं

सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप विशाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुष उदार।

चक्र बकर फिरा चतर चक मान प्रतीन। लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जे जाप आद देव अनाद मूर्त थापे सब जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूरण पुरख अपार। सर्व विश्व रचियो स्वम पव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सु परम रहत अभूत अलख अपेस। अंग राग न रंग जाक है जात पातन नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्त एक पुरख अवतूत। गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंग हीना भंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता।

की सर्वापर्णय की जगतंग कृति है, के शतरंग क्षत्रिय है, के ब्रह्मंग स्वरूप है, के अनुभव अनूप है, के आधा देव है, के आप अपेव है, के चित्रंग भी न के कैदी न के रोजी रजा कह रही

सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता सर्व शान्त्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाध्य गात स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र न तात न माता न जात न पात्र साग

स्वरूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक शांत

श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते ए करती बिन ए करती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भजन के भूप भली बिदनावत शीस न जात बिचारे इते भय तो कहा भय भूप त्यंत को नंगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसती अज राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान पजै बिनंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान संजम अनेक अनेक विसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सवै सब विचार हजार क देख है श्री भगवान पजै बिन

राख लेहु मोहि रखनहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमह पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा।

ला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत परम भुलाया, माया ता मोहनी तने कीते जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तसै विटों जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच।

कहे नानक जन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारह निर्मल बारह दा निर्मल जियो निर्मल सत्य सत गुरदे करणी कमाणी।

जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय ध्याए अंतर आत्मै

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सारण जानी ततै सारण जानी गुरु बाजो ततै सारण जानी तेहि गुणी संसार।

मन मुख भूले सब मरह गवार, पव जल डूबे ना उरवार ना पार। सतगुर भेटे पूरे भाग, साच रत्ते

चुंगियाइयालक बना परमाण लक तपुपर तीर्थां सहजोग बेबान लक सूरतन संग्राम मरमन छुटे प्राण लक सूरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखे आवन जान नानक मत मिथ्या कर्म सचा ने सान पौड़ी सच जब

विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार तरमी तरम करे गावा वह मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक्त न जाने छड़ बह करबार सबको पूरा आपे हो वह

सचावे के सोए सब निशाला मारियां करता करे सोए अगै जात ना जोर है अगै जीव नवें जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिना कुदत पाया।

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मह जो जोत मह जाता कलकला पर पूर रहा तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल्यो जिन की तीसो पार पया कहो नानक।

संध्याबादं सिलपूजन बगल समाधन मुख झूठ बुखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तलक लला टंग दो धोती वस्त्र पाटंग जे जान सबर मंग कर मंग सो कुट नो कर मंग पाओ नानक ने चो त्याव मिण सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना।

कदंच करुणा न उपर्जते, बिखियंत जीवं वस्यं क्रोध, नृत्यं क्रोध जथा मर्कट रहै।

अपजसंग मिटंत सत पुत्र है, सिमरतव्य हृदय गुरमंत्रण है, सिमरतव्य हृदय गुरमंत्र है, प्रीतम भगवान।

राग एक संग पंच बरंदन संग अलापै अठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुनस लेखी की पई बारी ए भैरो की पाचो नारी।

धर्म विद्या को कैसी धर्म कौन फन कर रही कौन राम गुरु काजा कैसे मरे पव सागर को तरही कलम एक नाम कृपा निध जाहे जपेकत पावे और धर्म ताके सम नाहिन ए विद वेद बतावे सुख दुख रहत सदारण लेपी जाको कहत कुसाई जो तो भी मैं बसे निरंतर नानक दर्पण चाई ठोठ महला नौवां भाई मैं कह विद लखो कुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मोह मन रो रह उरझाई रहो सगल जन्म परम ही परम खोयो न अस्त्र मत पाई विख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई साध संकब हूं नहीं कीना नह कीर्त प्रभ गाई जन नानक मैं नाह को गुण राख लियो सरणाई छोट महला नौवा माई मन मेरो बस नाही निस्बासर बिखने सो तावत कह विद ग्रो कोताही रहो वेद प्राण सिमरत के मत सुन मिख नही बसा

बिलोवन को माता, ताकि हो बिलोवन हारी, क्यों मिटे गो छाछ तुहारी, चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण अधारा रहाओ, तेरे गल है तौक पग बेरी, तू कर कर रमिया फेरी, तू अजहो ना चेतिस चेरी, तू जम बपरी है हेरी, प्रभ कर्ण करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी, जित लाई तित लागी, चेरी ते स्मित कहां ते पाई, जाते परम की लीक मटाई, सो रस कबीर है जान्या, मेरो गुर प्रसाद मन मान्या, जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता काल अकाई, सद जीवन पलो कहाही, मुए बिन जीवन नाही, अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत ब्योहारा, रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जन दाता पाया, सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाए ना मुका, और न पह जाना चुका, जो जीवन मरना जाने, सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो तन पाया,

verhaal een diarree. अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लहिए बस्त अगोचर पाई काट दीपक रिहा समाई कहे कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मान्या मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहा बिलो बस पानी काया मांजस कौन गुना जो कट पीतर है मलना रहाओ लौकी अड़सठ तीरथ नाई कौर अपन तो न जाई कह कबीर।

कर परतन लियावे, सूत दारा पह आन लुटावे। मन मेरे भुले कपट न कीजै, अंत नवेरा तेरे जी पहली जय। रहाओ छिन छिन तन चीजे, जग जनावे तब तेरी ओक कोई न पान्यो, पान्यो न पावे। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की न जपह सवेरा। संतो मन पवने सुख बन्या, किछ जोग प्राप्त गन्या। रहाओ गुर दिखलाई मोरी, जित मर्ग पड़त है चेरी। मुँह दलिए दरवाजे, बाजियल अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मेट्या उबा करिया। कह कबीर जन जान्या, जो जान्या तो मन मान्या। राग सोरठ भूखे भगत न कीजे, जय माला अपनी लीजे। हो मांगो

बेडी के गुण सुनरी बाई, जल्द बांध त्रू थाप्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंक पपीखण आप्यो हो, सोठम कार तीजा। अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावना कनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत विचारे कोई, मैं को मिल्यो राम स्नेही, जह मिलिया देह सुदेही रहाओ, मिल पारस कंचन होया, मुख मंता रतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पतिया पतियागा, जल पीतर कुंभ समान्या, सब राम एक कर जान्या, गुर चेले है मन मान्या, जन नाम है तत पिशान्या, राग सोठ बाणी भगत रविदास जी की।

लहर लहर में उद्दत जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा जैसा मान्य हुए न तैसा रहाओ नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पया पिखारी अछत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज कुयंग पियंग पर संग जैसे है अब कछ मरम जनाया अनेक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोगवे सोई कह रविदास हाथ पैने रह सहजे हुए सोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम अराधे माधव जानत हो जैसी जैसी तैसी अब कहा करोगे ऐसी रहाओ मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांद कियो बहो बानी खंड खंड कर भोजन तीनो तौ न बिसर्यो पानी आपन था पै नाही किसी को पावन को पर पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत इक बाडी अब एहे कास्यो कहिए जा कारण हम तुम अरादे सो दुख अजहू सही है दुर्लभ जन्म पुन फल पायो वृथा जात अभिविक राजे इंद्र संसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो कह लेख ना विचार्यो राजा राम को रस जह रस अनरस बिसर जाही रहाओ जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमारथ परवेश नहीं कहियत आन अचीरियत अन कछ समझ न पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करो जी दया सुख सागर सुरतर चिंतामन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सद नवनिद कर तलता के हर हर हर ना जप है रचना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सर नाही सहज समाध उपाद रहत फुन बड्डे पागल बलागी कह रविदास प्रगास हृदय तर जन्म मरण पै पागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पै है चकोरा माधवे तुम ना तोर हो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कवन स्यो जोग जोर है रहाओ जो तुम दिवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोग।

तुमरे भजन कटह जम फांसा, भगत हेत गावे रविदासा, जल की तीत पवन का बंपा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंद उसा।

चांद कह रविदास चमारा चमरटा गांठ न जनई लोग गठावे पन्हे रहाओ आर नहीं जह तोपो नहीं रात ठाओ रोपो लोग गांठ गांठ खराब गुच्चा हो बिन गांठे जाए पहुंचा रविदास जपे राम नामा मोहे जमसो नाही कामा राग सोठ बाणी भगत तीखन की

शब्द नहीं उचरे अब क्या करे प्राणी। राम राय हो है बैद बनवारी अपने संत लेहो उबारी। रहाओ माथे तीर शरीर जलन है कर्क करे जे माही। ऐसी बेदन उपज खरी पई वा का औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल इहो औखद जग सारा। गुर प्रसाद कहे जन पीखन पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया। अनेक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। हर गुण कहते कहन न जाई जैसे गूंजे की मठियाई। रहाओ रसना रमत सुनत सुख सर्वना

साहेब अपना अवर न जांचो कोए, नानकता का दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। साहेब तेरे नाम बिठो बिंद बिंद चुख चुख होए। रहाओ तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इकदमी मोहलत मोहत ना जाना। नानक बिन वैत से श्रेव हो जाके जी प्राणा, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना। रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक शायर एव कहत है

रहे हम रहण न पाया, जीवत्या मर रही है। इतना श्री महला पहला घर दूजा, एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद। क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ह्याओ जीड़ा बिल लाए। सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसर ऐ चंगा क्यों होए। हिकमत हो।

बासठ जग पर प्रसट होए, डूबता इव जग कल मै राम नाम सार। अखीता मिठै नाक पकड़ है ठगण को संसार, रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तन लो, मगर पाछे कछ न सूझै एहो पदम अलो। खत्रिया ता धर्म छोड़िया मलेश पाखिया गही, सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराना सोध है करे वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही।

सहता सद वाजंत फेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिसकै चानन सब में चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस पावे।

कारण को हुए जाते तेरा नाम वासा। तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद। इहो तन अखुट ना निखुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई। से तनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर तन पर गास्या। हर कृपा ते वसे मन आए रहाओ अवगण काटे गुण हृदय समाए। पूरे गुर कै सहज सुपाए पूरे गुर की साची बाणी। सुख मन अंतर सहज समाणी एक अचर्ज जन देखो पाई। दुविधा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाए। गुर प्रसाद वसे मन आए सब में वसे प्रभ एको सोए। गुरमति घट प्रगट होए सहजे जिन प्रभु जान पिछाणिया। नानक नाम मिले मन मान्या। तनासरी महला तीजा हर नाम तन निर्मल अत अपारा। गुर कै शब्द परे भंडारा नाम तन बिन होर सब बिख जान। माया मोहे जले अभिमान गुरमुख हर रस चाखै कोए। तिस सदा आनंद होवे दिन राती पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ। शब्द दीपक वरतै तिहु लोए जो चाखै सो निर्मल होए। निर्मल नाम हमै मल तोए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाख्या सो हर जन लोग तिस सदा हरख नाही कदे सोग। आप मुक्त अवरा मुक्त करा।

मुक्त पदार्थ तिनको पाए, हर कै नाम रते लेवलाए। गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगास हर नाम त्यावे। रहाओ इहो हर रंग गूड़ा तन पर।

साच संभालो दुख जाए, साचे शब्द बसे मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कष्ट तृष्णा अगन बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै पाणे।

मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा। तना श्री महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। एहो मन मरे दारू जाने कोए, मन सबद मरे बूझे जन सोए। जैसनो बक्से हर देवड़ियाई, गुर प्रसाद वसे मन आई। रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन में मत मै गल मिकदारा, गुर अंकस मार जिवालन हारा। मन असाद साधे जन कोई, अचर चरेता निर्मल होई। गुरमुख एहे मन लया सवार।

संच है मूरख गावार, मनमुख पुल्लै अंध गवार, भिख्या के तन सदा सुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमति पाए, काचा तन फून आवे जाए रहाओ, मनमुख पुल्ले।

चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम पीखख पेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हो बलिहार जाओ साचे तेरे नाम बिठो करने कारण सबना का एको अवर न दूजा कोई रहाओ बहुते फेर पै किरपन को अब किछ कृपा कीजे हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जय पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जान्या साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यो मन मान्या तनासरी महला चौथा कार पहला चौपदे एक

तारी रहाओ। जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बिसंतर तायो, मलकाटी कटत उतारी। हर हर जपन जप्यो दिन राती, जप हर हर हर उर तारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हमें मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। इतना श्री महला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लव लागी। रहाओ संत जना

त्यागी क्या हम कर्म नान निकतीरे। तुम वड पुरख वडागी तुमरी गात मित कह न सक है। प्रभ हम क्यों कर मिल पागी हर प्रभ स्वामी कृपा तार हो। हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महल्ला।

हम तिस कह सद कुर्बानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब तिलबख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जन पाया, ते वड पुरख वडानी, तन की तूर मंगे प्रभ स्वामी, हम हर लोचल चानी, हर हर सफल्यो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जप्यो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से, सब लाथी भूख पुखानी, जिनके वडे भाग वड ऊचे, तिन हर जप्यो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तना श्री महला चौथा। हम अंदले

गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेव हो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बाधो, मत जानो आज कै काली, हर के संत जपो हर जपना,

जप लो चल चानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेल हो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निम खाती हर बिन रह न सको इकराती जो बिन अमले अमली मर जाई है त्यो हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर अत अगा हम लह न सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जप्यो गुर रंग चलू लहराती हर हर भगत बनी अत सोबा

सब छूटी जम की बाती, हर के संत जप्यो मन हर हर, लग संगत साध जना की। दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरख पुरख वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपाकी। जन नानक को प्रभ कृपा की जय, कर दासन दास दशा की। तनासरी महला चौथा घर, पंजमा दो पदे एक ओ अंकार, सत गुर प्रसाद। और तार विचार मुरार रम, रम मन मोहन नाम जपीने। आदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी, गुरपुरे प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम कासट लोसट, हर संग हरि सत संग पै, हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छे खट बोल है मुख, आगर में आगर मेरा हर प्रभ एवना पतीने। जन नानक हर हृदय सद त्यावो, यो

मन जपिया हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती, हर कीरत कर बनवारी रहाओ, हर हर करी दृष्ट तब पयो, मन उद्दम हर हर नाम जप्यो, गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा चौरासी सद बुद्ध ते तीस कोट, मन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाओ, गुर प्रसाद को बिरला पावे जिन को लाट लिखिया तुर पाओ, जप मन रामे नाम हर जस।

शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हो पाओ, दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरण का है चाओ। तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूज

जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। बोलो पाई हर कीरत हर पवजल तीरथ, हर दर तन की उत्तम बात है, संत हो हर कथा जिन जन हो जानी। रहाओ

हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याय मेरे जीड़े का सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मन सत नाम सद

तीरत्या औड़ी किस विसरित तन भस्म हुए कहते सब प्रेत खिन गिर में ग्रह में प्रसन्न देवी जिन सो सोई हेत कर नर्त दर्प संचया सु कार्य के जैसा बीजे सुलण कर्म एहो के कृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कूड़दान स्नान अनक शोधन पवित्रता पवित्रता है उच्चरांत नानक हर हर रचना सर्व पाप विमुचते ही सन की सोम कणा पूरी दीतम पाहे मन चंद्रो सच सह नान खबे डुखड़े उलाहे पौड़ी कूट अब सब नाश हुए सिमृत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटी है निचिल सच सच थाओ

राज सुख मिश्रम नाच भोग रस मिश्रम नाच मिश्रम सुख माया विष्णु साध संग हर नानक दास मिश्रम प्रभु दर्शन लगड़ा सोले हो मन मजाऊ रत्या बिछड़ो सच थोक नानक मिठा सो धनी पाउड़ी हर बिन कछु न ला गई पतन को मीठा आन स्वागत पीकिया करने नौ जीठा अज्ञान परम

ताकत चलन न जीव मीनम न त्याग चतरक मेघ कण मंडल है बाण विदंत कुरंक नादम आल बाण विदंत कुरंक नादम आल बंधन कुसुम बासना है चरण कमल रचांत सांसे नानक आनन रुचि से मुख दिखाऊ पलक छड़ आना देव चेसा जीवन संगम जिते सनी अनानक संसा मित पाड़ी जो मछली बिन पाड़ी है जो जीवन पावे बूंद भी होना चातर को तू कर बरसावे नाद क्रंखे बेदया सनमुख उठ सावे पवर लोभी कुसुम बास का मिल आ बंधावे तू संजना हर पीस है देख दर से अगावे श्लोक चित बंत चरण कमलम साध साध आराधन है न विश्रांत नाम अचुत नानक आदि पूर्ण परमेश्वर है शीसड़ा मन मन जाहे पालकना सीवे बाहरा नानक आसरी निभाहे सदा पिखंदो सच तनी पौड़ी आशा बंती आस गुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कभू चूरी है देव दर्श मन चाओ लह जाए भी सूरी है हुई पवित्र शरीर चरना सूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा दूरी है श्लोक रसना उच्चरांत नाम रब सुना शब्द अमृत रह नाग

ना पिरही सच सियो थोड़ी। सद बलिहारी सिन्हा जे सुनते हर कथा, पूरे से प्रधान निभावे प्रभु कथा। हर जस लेके बियासो सुह है सी हथा, चरण पुनीत पवित्र चाले प्रभु कथा। संता संग उदार सगला दुख लथा, लोक पावी उदोद कर्म हर रमण संजोग पूर्ण है। गोपाल दर्श भेटम सफल नानक।

बेला को कौन है कि तब को पाई तू मूर्त पला संजोग है किस मिले घुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच पुजाई बड़े पाग सत्संग हुए निबला गा पाई मन दर्शन की प्याज है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है ते पांच नानक हर हर हरे चढ़ हब आप लगड़ो चरना पास नठो दुख ताप नानक तब भी कंधिया पौड़ी।

उदरण दयालम आसन गोपाल की सना है निर्मल सत्संगण ऊट नानक परमेश्वर है चंदन चा

करे कुटुंब संग लोग कुल सुबाया लोक गुरु गोविंद गोपाल गुरु गुरु पूर्ण नारायण है गुरु दयाल सम्राट गुरु गुरु नानक पथ सुधारण है पौजल विकुंस गाह गुरु बोह सह तारियम नानक पूर करम सतगुरु चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरुदेव इस संग हर जपे गुर कृपाल जब पे आवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरुदेव नीचो उच छपे काट सिर्फ दुख माया कर लीने अपद से गुण गाये बेबेन बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टांत एको सुनियांत एको प्रतांत एको नरहर है नाम दान जचांत जा जांत नानक दयाल पुर कृपा करै एक से

हर प्रभु की राह, हर रंगी हर नाम तब पाया, हर गोविंद हर प्रभु की राह, हर हृदय मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक पाग चंगेरा, रूप विकार जिना मन लागा, हर बिसरिया पुरुष चंगेरा, वे मन मुख मूड अज्ञानी कही है, तिन मस्तक पाग मंदेरा, विवेक बुद्ध सदगुरु से पाई, कुछ ज्ञान गुरु पव केरा, जन नानक नाम गुरु से पाया, हर मस्तक पाग लिखेरा, टूडी माला पंजवा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संतन अवना काहू जानी, बेप्रवाह सदा रंग हर के, जाको पाख स्वामी राव, पूज समाना ठाकुर तेरो, अवना काहू तानी, ऐसो अमर मिलु पावतन को, राच रहे रंग ज्ञानी, रोग शोक दुख चरा मरा, हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी, टोडी महला पंजवा हर बिसर सदा कुआरी, भागो सोखा कहा व्याप जाको ऊट सुहारी, राव बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्ब जैसे हर जारी, नव खंडन को राज कुमावे, आंत चले गो हारी, गुण निदान गुण तिन ही जा गावे, जाको कृपा तारी, सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक दिस बलिहारी, टूटी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तायो रे मन दायो, माया मग्न स्वाद लोभ मोहयो, तिन पब आप पुलायो, राव हर कथा हर जत साध संगत, सो एक मोत नए मन लायो, भिक्षु पेख रंग समको, प्रारूप के पर गृह जो न जायो, भिक्षु पेख रंग समको, पर गृह जो न जायो, चरण कम सु पाओ न कीनो, न सतपुरख मनायो, सावत को सावे बौ पाती, जो सेली बल्द परमायो, नाम दान स्नान न कियो, एक निमित न कीर्त गायो, नाना चूट लाए मन सोखियो, न बूझो अपनायो, पर उपकार कबू की पर उपकार न कबू किए, नहीं सतगुरु से वित्य आयो, पांच दूत राज संगत गोष्ठ, मत मारो मत मायो, करो बेनती साध संगत हर, भगत बचन सुने आयो, नानक पाग परे हर पाछे, राख लाज पनायो, टूडी महला पंजमा, मान मुख बिन भूजे बिरथा आया, अनक साज सिगार बह करता, जो मृतक उड़ाया, राव ताए ताए कृपण शर्म कीनो, एकत्र करी है माया, दान पुण्य संतन सेवा, किसी काज न आया, कर अपारण सवारी से जा, कामन ताट बनाया, सांगना पायो अपने पर से, पेक पेक दुख पाया।

गए प्रभ संग प्रीत राहो। दास मारे की पावो सूरा मस्क ले ले लावो। महापद से होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा सुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो। जो तू दे सही

आगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण काम राओ राज माल अनेक भोग रस सगल तर्ब की शाम ताय तय बहुत दुख सावे सगल नरात नरात काम बिन गोविंद

सुख इस मन को बर्तन एक हमारा है राव। नाम चास नाम मेरी पत है, नाम मेरे परिवार है, नाम सिखाई सदा मेरे संग, हर नाम को निस्तार है। बिकी बलाद कहियत बहुत तेरी चास।

की प्रभ आ गए अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर टेक। टोली महला पांजवा हर हर नाम सदा सद जाप, तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी बसी कीनी आप राव। जिसके सिर फिर जिसके से फिर चिन्ह ही संभाली, बिनसे शोक संताप हो, आधे राखे जने अपने हर हुए माई बाप। यह जंद हुए मेहरबाना दया तारी हर नाथ, नानक सन परे दुख भंजन जाका बड़ बरताप। टूटी महला पांजवा स्वामी सन पर हर स्वामी सन पर दरबारे, कोड अपराध खंडन के दाते कुछ बिन कौन उदारे। राव खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे, सा संग परम कद पाइया माया रच बंद हारे। चरण कमल संग पीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप सगले रो निवारे। टोडी महला पंजवा कर तीजा चौप दे एक ओकार सतगुर प्रसाद, हां हां लपटोरे मूड़े कछु न सोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राय सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बिसायो, छोड़ जाए बाहु चित लायो। सो सचो जित कूक सिसायो, अमृत नाम सोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कुप परया, गुर प्रसाद नान को तरया। टोडी महला पांजवा मारे एक हरी हरी आन अब

करता है कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर चुनिया को नान जिन ठाकुर पाया सब कुछ तिसके गृह में आया टूडी माला पंजमा।

रूढ़ी माला पंचमा कर गहलो मुड़ो ह्यूरे यू महाराज महाराज री मायो यू महाराज री मायो जिहर न्यायी मोहे प्याक्यो रे राहो कणो कणो कणो सद लूड़ लहने क्या ठे पायो रे महाराज जो गास बहु सो लुबड़ो पागड़ो ओ ओ पाए समझोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो सारे सगले प्राप्त मिट्यो रे जाको लहनो महाराज न ही गाठड़ियो नार गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी माला पंजमा कर पंजमा धूप दे एक ओ कर सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी के न पांच दोखर अहम रोग है साते सगल दूर की ना राव बंदर चोर

एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है हरि करहौ। प्राण आधार जीवन धन मेर मोरै एकन को दर्शन प्रभ नीत। बाढ़ काट सुरसा संग मोरै मन अपने को हर सका की का। संत प्रसाद पे मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीता। सिमर सिमर नान सुख पाया आदि जगत।

अपने पद को पूर्ण दान रहाओ। खूब पारो रात मेरे प्रीतम अंत जामी सुकृत सुजान। कोट राज नाम तन मेरे अमृत दिश तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे चतुर अकावे।

से माया के साधु संकत मिटी बिसूर सुख संपत भोग के मिन हर नानक जाने कूर टोडी महला पंजमा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रहन सको बिन प्रीसमा दर्शन देखन को तारी मन आस राव सिमरो नाम निरंजन करते मन संस्ते सब किल विकनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख सुख दाते नासी बिमल जाको जास शांत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुण सास सांस सह सुख मन उपजियो सूर सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजमा हर हर पथ पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन राहो सुंदर सुगर चतुर सब बेता हृदय निवास पग गुण गावन निर्मल रूप

रसना सिमर सिमर जत जीवा नाथ दा सदा बल जावना। टोडी माला पंजमा माई माया चल तिनकी अगन में की छाया कोबिंद भजन बिन हर का जल राव चोड़ सियाणप पहुंच सराई जोए कर जोड़ सा।

आप रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहो सच्चा वणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर ध्याये सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा राव अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर राके उदर मजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंत छडा बनारा जाके हृदय बसिया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा ते पाइये हर जप नानक नाम अदारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित ध्याए जो इच्छे सोई पल पावे फिर दुख न लागे आए रहो सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक गिन मैं बिसर सब जाए तू वे अंत सर्व कल पूरा किच कीमत कही न जाए नानक सरण तुहारी हर जियो भावे तिवे छाए राग बराड़ी महला पंजवा घर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो सर्ब सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग तलंग महला पहला घर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद।

भक्त हम चुबकी लगा पल बे नजर बेबाका नानक बग्योद जन तुरा तेरे चाकरा पाकाक।

सर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता जोत नेही सर्बे परमल करना ही पट भांडा कहना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होए तेरे नाम निवेर लिवलाए नानक तीन दर पीख्या पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद यो तन माया पाया प्यारे लितड़ा रंग रवगाए

धन कमलिए बहुर क्या टुंडे भय किया दे सलाइया नैनी भाव का कर सिगारो ता सुहागण जानिए लागी जा सो धरे प्यार।

पाइए और कैसी चतुराई। सौ नजर करे देखे सो दिन लेखे कामण नो निध पाई। अपने कंत प्यारी सास सुहागण नानक सास बराई। ऐसे रंग राती सहज की माती एन जपाई सुमाणी।

को पुराए, दिल कब्ज कब्जा कादरो, दूजक सजाए बलि नियामत, बिरादरा दरबार मिलकनाए, जब अजराई

का नगरी काहे के बगोल चंदी हजार आलम एक कलखाना हम चिन्नी पाचा सावले बरना हस्त पाज गज पत नरे नरिंद नामे के स्वामी मीर मुकंद

पाइए। सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाइए। निजर जरे सहज धुन लागे घर ही परचा पाइए। अंजन माहे निरंजन रहिए जोग जुग तिव पाइए। नानक जीव त्या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजो सिंघी बाजे तो निर्भर पद पाइए। अंजन माहे निरंजन रहिए जोग जुगत तो पाइए।

जितने भगत हर सेवका मुख अड़सठ तीर्थ तिन तिलकड़ाए जा नानक तिन को आन दिन परसे जे कृपा करे हर राय सूई महला ती चौथा।

संत प्राण धन तिसका बनहारा। भाई मीत सुत सगलस्ते जी हूं ते प्यारा राहो केसा का कर बीजना संत चौर टलावो। शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज निहारो चरण तल धूर मुख लावो ताज अवमान सरणी परो हर गुण निध पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का संग मांगो नानक को प्रभु दया कार कर दास चरणी लागो। सुही महला पांचवा जिन मोहे ब्रह्मांड खंडता हूं मैं पाओ राख लियो एहो बिखई जियो देओ अपना नाम रहाओ जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ छोड़ जाए जोग सगल को फिर लपटाओ करो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजमा घर पंजमा पड़ताल क्यों कार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोविंदे कै अवर नहीं को लेखै संत लाग मन शाड़ दुबदा की कूरिया राव निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठनिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहा आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुड़िया बहुबिद फिरिया पर कौहिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुरमिरिया बहर न फिरिया सूही महला पंजमा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पसारा रहाओ बहुबिद रूप रंग पारा पेखे खुशी भोग नहीं थारा साब रस लैत बस्त निरारा बरन चिहन नाही मुख न मसारा कह न जा

देव राखो स्वामी। मार्ग गुरै पठाया रहाओ महा दुतर माया, जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया। करो धर्म राया ग्रह अंध को पाया, पावक सकराया गही ओट सदाया। नानक हार त्याया अब मैं पूरा पाया, राग सूही महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिलै नाम आधारा तुठा सच्चा पातशाह। ताप गया संसारा भगता की टेक तू, संता की ओट तू सच्चा सज्जनहारा। राव सच तेरी समग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया, सच तेरा पसारा। तेरा रूप गम है अनूप तेरा दरसारा।

भक्त तेरे। तेरे सेवक को भौकिश नाही, जम नहीं आवै नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मिटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ध्यान सुख फल पायण, आठ पैर आराध है तेरी शरण। तेरे प्रवास है पांच दुष्ट लै साध है। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सुही महला पंजवां, सगल त्याग गुर सरणी आया। राखो राखण हारे, जे तू लावे तित हम लागे। क्या ए जंत बिचारे मेरे राम जी, तू प्रभ अंतर जामी। कर कृपा गुरदेव दे आला, गुण गावा नित स्वामी। रहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई, गुर प्रसाद भौ तरिये। आप त्याग होइए सब रेणा, जीव त्याय मरिए। सफल जन्म तिसका जग भीतर, साध संग नौ जापै।